30-15 हमारी जरा कॉस्मेटिक पाकिस्तान का हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप लोग अपना मैसेजेस अपना प्यारी अपनी प्यारी सी आवाज को शामिल कर ले कर सकते हो आप लोग बिल्कुल जी काल में ला के या मैसेज करके अब अल्फाज और आवाज दोनों को।

शराकत कर ले शांगले, शांगला में भी हमारी आवाज बिल्कुल साफ जाती है लेकिन वहां के लोग भी बिल्कुल खामोश है। तो अपनी खामोशी को खत्म करके आए हमारे साथ इसना कॉस्मेटिक पाकिस्तान में शराकत कर ले ताकि हमें भी अंदाजा हो जाए कि जहां जहां हमारी आवाज सुनाई दे रही है सब लोग आएंगे इंशाल्लाह हमारे साथ प्रोग्राम में शराकत कर लेंगे। स्वाभाविक वाले तो हमसे बात अगर रिक्वेस्ट है चले के सना सुमीना वर्ल्डी रिसात हुआ पता नहीं लगी चुमीना वो मोली का मशवा माद छे वही लुक ना मैं छे जमाड़ी रिसात खोखते बस नहीं इसका मजा होता सुराजी प्रोग्राम तक जिस तरह से जमुंग नौहार निजामपुर सुमरोम जहांगीरी टोपई वाले इलाके दी मुरगोस हिजरो वगैरह वगैरह गुवाहाटी चारबाग वर्सरची कम दे गदुन जदुन तुरबेला हाजीशा जिस तरह तक चिकम इलाके दी तड़ी ली बिल्कुल जी राजी मुक्सर प्रोग्राम की बरखाखली टांग डबरा वर्सरची कम दे बीरा

दरवे खत्म का खबल दरवे माविया ऑटोमेटिकली उरे उरे तो सरच से मरा कसून जुड़ाऊ दी अब ऑटोमेटिकली गली गली गली गली गली ए दग मासियत नवे गली गली दिया रे जी उधरे द बेहतरीन माशरे से बेहतरीन माशरा की मदो और बेहतरीन माशरे से बेहतरीन खाल कीम दी इसलाह कवीन की सेक तीगे शकी में की में क्वालिटी चे पचार दी अगर गटा क्वालिटी दागा दो विच मुसलमान आगा दा इस्लामी माशरे प्रचार कौन लगे करना विच मुसलमान आगा दा जद दे रबेना और जद दे लोसना बल सड़ाई महफूज हुई अस गोरा खबर तुम पकड़ दा ए तो दे लोसना और तो दे रबेना बल सड़ाई कचरे महफूज दा द पेशा चे जब बेहतरीन मुसलमानों ने शेजश मेरश ओ कचरे तो दे रबेना और तो दे लोसना बल सड़ाई प तकलीफ ता बे तो न बदतरीन इंसान बल नश्तदा गोरा देहादीस द्वारे पहलू होता है मिश्तों से नजर कई जे आया मिश्तों से ता मुबारक सफर में जे बेहतरीन तो से आगा दा जे तो दे रबेना और तो दे लोसना बल मुसलमान पर तकलीफ नहीं दले ख्वाजे इज्जत मने इंशाल्लाह दावे इंशाल्लाह टॉपिक पे गर्जी दे मिश्तों से दिमानशिप पार्टिसिपेशन जदा भी ये बार बार दोस्तों ये जो इंशाल्लाह जुड़ाव या सर आखिर टाइम पे रहे बेहतरीन खबर इंशाल्लाह सर शेर कमीन का ही और टोर ना पहला दे सजाद भाई डडीवाल डडीवाल ना भाई माशाल्लाह दे सजाद भाई मैसेज दावे चमुकोर के इशमार टोल प्रोडक्ट अवेलेबल दी दा माशाल्लाह मिश्र बेहतरीन मगर सारा वेदा सो नीचे बेवफा गुंदे आदा करना जका चे लोड बे बिया गलती सरा मैसेज प गलती सर अंदर होगला बगैर दे नन ओदे वे साड़े की मामो शोकरी वा सजाद भाई डडीवाल भाई ये केनन जदर तवी दा चे बेवफा सारा यु खातले सा चलो जनाब इस वे उला गई हाजरी चाहे ऐसे एक सकती किम किम जना मोसरा मुखातबीन दी हजरात दी उसामीन हजरात में दी इंशाल्लाह टोरना द्वाम में से चिदागा जमील खान लंडीवा दा जमील खान लंडीवा वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातो दी सरा देशमा तमाम प्रोडक्ट मिलावे जी आशिकुल्ला भाई माशाल्लाह आशिकुल्ला भाई फ्रॉम बहादुर खेल करक तमाम एशमा प्रोडक्ट अवेलेबल है जजाक अल्लाह खैर जजा लाइबा सिस्टर वही भाई जान सरंगी आवाजों की दा करक और लकी रेडियो मान दी लाइबा खानी बिल्कुल अवर खो टोला खबर दागा दो चेप हमें दोने शे मिज़ मेन दस सड़ाई नब शेर लटावाई शी जका चेटोल आगा का सोन दीप शमाशाला चे द्वेर पीवे चे पकिम शो तफाईदाई आगा शाई दी खरसाई बरहाल जब याम ये तो से वर्तलाई शी जाकेर था जाकेर भाई ना जैन मार्ट था तो से वर्सी ओ इगना मुतलबा का ये मिज तकरीबन हफ्ते पो हफ्ते मिज दे मंगल मेला हो दे हमें दोने मो दे सनमिनों ने धीरे मिसाल के तौर पर विजिट हुई और मिज पेरा ना टोल दिकंदरों तक काल का ही चाहे तो से किम किम इन्वायरमेंट तैयार था उषा ही चामिश पेरा को बहरहाल च किम दिकंदरों से आर्डर हुई आमिर डिस्पैच को होता और खबर अदा का दो चे दिए वेले दिए सारा अनियन शैम्पू और विटामिन सी सीरम वेले ने दी सारा अवेलेबल जो दाऊ यही चे कोशिश पचार था चे मिज वा कोशिश का तो सालिश की होता यही है चारा हफेज भाई ने तो से दागा प्रोडक्ट वेले नर घोड़िए

0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम।

0: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क।
1: वेलकम टू रेडियो अमन 88.4।
2: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
1: You are listening to Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
4: 88.4 FM.
5: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनारस होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
1: Welcome to Radio Aman 88.4.
6: बीमारी हक दे अविलाजी सुनत अमल दे, अविलाजी सुनत अमल दे।
7: ओस कचेरे तासु तदा से अमराज भी चितासु वरना ढेर परेशान आयो और ढेर गर्जिदली कड़ीदली हो, ढेर गर्जिदली कड़ीदली हो।
6: नो बिल्कुल मायूसके गई माँ, मायूसके गई माँ। अल शिफा दवा खाना शवाल मार्केट टांग सिटी ता तशरीफ रौड़े और द हकीम मौलाना नूरुल हुदा सेवना पल इलाज तरला सकवले शे।
7: और द नूरु मालूमातो दे पारा पदग नंबर काल कवले शे
6: 0319-55-23-404।

0: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन फयकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
1: की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की नशरियात। हमारे साथ रहिए।

दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम।

हाँ जी बिल्कुल, प्रोग्राम की बात इसमें कॉस्मेटिक है प्रोडक्ट वाले सर खबर की जी। और बिल्कुल तो सर लाइट प्रोग्राम के शेरकत से कम देखे वाले मत मैसेज के वाले सिक्का रेडियो बने प्रोग्राम और एक करेक्ट रेडियो बने या दिन अलवा ठाक रेडियो बने कमर रेडियो बने प्रोग्राम और मत मैसेज के वाले और दिन लापति नंबर बने कॉल हम के वाले कॉल को दोबारा डायल कोलिशे 09 अच्छा जी बिल्कुल 0331 52 65 340 खैर दे पीटीसीएल नंबर बने हो कॉल को वाली कसुक पीटीसीएल नंबर बने कॉल को वाड़ी ने बिल्कुल पीटीसीएल नंबर बने हो कॉल को वाली 0927 291 292 और दिन अलवा मैसेज हम के वाली शेप हो 0331 52 65 340 और दिन अलवा 0345 933 2580

हाँ जी बिल्कुल कचरते के दोस्तों बिल्कुल मैदे मसली मैदे मैदा मो जलन के भी और बिल्कुल तो सोख रही नो बिल्कुल अवेचे आजे मकी जुम ना या दिन लम अक्सर कल कल आजे हकी जी सार टाइम सकल सड़ाई नष्ट होगी क्या ना नो आगे ना बाद बिया मैदा डेर ज्यादा चुकम ने सड़ी जलन के भी इन्हीं मैदा स्वजी नो बिल्कुल आगे दे पड़ा इश्मा एक वसीयत चुकम ने इस्तेमाल वाले शे और याद ही ना लवा बिल्कुल तो जिसम के सह मतलब तकलीफ ही कब वसीर तकलीफ याद ही ना लवा लगा सरंग की खबरों में कुछ मैदे तकलीफ ही मैदा जलन के भी मैदा मुस्वजी याद ही ना लवा तो जिसम पर कम जीवा ने हाँ दर्द भी नागिद पर बिल्कुल इश्मा हर्बल ऑयल चुकम दे से माला वाली शे दिन अलवा बिल्कुल दसे मेल और फीमेल हजरात चाह यही करना कि जोक शलाई लीडर शो खैस्ता सुरत ही खैस्ता खार करना नो बिल्कुल लगा चुकम दे इश्मा फार्मूला ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल वाली शी

या दिन इलावा चाप सर के सुरती पखदे अक्सर कल कल दल तक ये लगा लोकल लैंग्वेज वर्ते वही क्या ना बोरा ही उपचिक है ना ना पखा चुकों दे वर्ते वही लिशी नागदे पर बिल्कुल तासु इश्मा डेंड्रिश शैम्पू चुकों दा ऐसी मारा वाली शी इश्मा एंटी डेंड्रिफ शैम्पू या दिन अलवा डेर तक किसान चाबिये ची मो व्यस्त चिकिम दिखे ना अक्षली लिदल शी नो बिल्कुल लगा चुकों देसी माला वाली शी इसमा ब्लैक शाइन शेम पोजी की मदो आ बिल्कुल इससे माला वाली शी आई ने तकरीबन वो किस्मा शेम पोजी पर इसमा कस्मेटिक कंपनी के आ बिल्कुल लगा सुमरा हम प्रोड्यूसी इसमा कस्मेटिक हर जनरल और कस्मेटिक स्टोर ता कस्मेटिक स्टोर के पास नहीं सरा तो सा अवेलेबल दी का बिल्कुल कर खबरों की बनो खबरों की दस टांग हाँ खबरों की नो बिल्कुल हर जगह तो सा बिल्कुल अवेलेबल दी इश्मा कस्मेटिक प्रोडक्ट्स और मजीद मालूम पर कचर तक नमे लवीजी नो पदे कंपनी हेल्पलाइन नंबर बने कॉल कोली छे चाद इश्मा बाहर प्रोडक्ट बने मौजूद दे और 0342311292 ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲੋ ਵੀ ਵਗੈਰਾ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਤਰ ਤਰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਿਉਂ ਲਿਸ਼ੀ ਪਤੀ ਦਵਾੜੋ ਨੰਬਰ ਬਾਨੇ ਇਨੀ 0331 52 63 40 ਯਾ ਦਿਨ ਲਵਾ 0345 933 2580 0331 52 65340 या दिन लवा 0345 933 2580 ले दे नंबर मैंने बिल्कुल प्रोग्राम किया लाइव कॉल को लिशी

हाँ जी बिल्कुल, यू नजर सिर्फ मैसेज बने को भी बार डायरेक्ट कॉल तरह तस्वीर प्रोग्राम के बिल्कुल कॉल चुकुन आकाश मिले भी टिक्स पे बिल्कुल हान मनकिल मसे मैसेज करे देगा ना वैसे लिसनर तरीखान ओ मिस डीओ दबशान लकज मरी हो माशाल्लाह वैसे अस्सलाम वालेकुम तारिक सिर्फ खैर रागले संग गई वैसे करता वाला है शी बिल्कुल आवश्यक जबरदस्त माशाल्लाह ये चेरे करे क्रेडी बने आवाज ओके क्लियर दे इट्स मी बनिकुल किंग गुलालई फ्रॉम खकी विच मिस डी मामू जानता हूँ सलाम वालेकुम अस्सलाम विच लोही सड़े जैसे डेरा मन ना लोही खतर जैसा विच तारक सर क्या की के सादिक मार्केट के इसमें टोल प्रोडक्ट चुकम दे मिला बीजी समी सरा समी कस्मेटिक सरा रहीम रहीम रहीमुल्ला कस्मेटिक सरा देन रफीउल्ला कस्मेटिक सरा हाँ टोल प्रोडक्ट मिला बीजी फरीद सराहा चुकम दे टोल प्रोडक्ट मिला बीजी व्हाट्सएप सर जवाद कॉस्मेटिक सरा साकिब कॉस्मेटिक सराहा टोल प्रोडक्ट चुकम दे मिला बीजी और दीन अलवा चाँद शॉपिंग सेंटर सराहा देशमा टोल प्रोडक्ट मिला बीजी माशाल्लाह खान मलक मसे चुकम दे डेरा तेजा दोस्तों डेरा ज्यादा एड्रेस लजली दी यो जहान मना ना द मैसेज कवले देन अलवा जी वेलकम सड़े माशे तारिक अजीज भाई माशाल्लाह चरंगे बिल्कुल ठीक ठाक वैसे आवाज जी ओके दी 88.4 बांधे आई एम फाइक एंड फाइका एंड कैनात फातमा लंडी वना वैसे सलाम में वर्क मलाला वान था जलाल था अरिशा हटक था लाइव हानी था पलवशा था और सितारा मलाला फरियादी था टिक शेरा मन ना वालिकम असलाम टोलू था सलाम दे वरस तो यो जहान मन ना शादी अलग मरबत ना मैसेज करे दे और वैसे कर रेडियो बने आवाज बिल्कुल ओके दे टांग रेडियो बने हाँ यो जहान मन ना सानी हटक अम्बेरिकल ना मैसेज करे दे और यही कहना चाहिए सानी हटक अम्बेरिकल ना दुआ सलाम सरजीत संगे आवाज दे ओके दे कर रेडियो बने मिस्डी था सलाम टोल ने सर

जी सही बिल्कुल कॉल चुके हैं शिवली जी 0331 5265 340 या दिन लवा 0345 9335 2580। कसी जी बगल में बलसो को दिखे नरसी पर 0345 9335 2580। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बिल्कुल तुसे आवाज नरदरी में कसी जी पकाल बने बरसों को दिखे ना दी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बिल्कुल

जी बिल्कुल, चाइल्ड गिफ्ट सेंटर के बतौर से टोल प्रोडक्ट चौक ने मिला ने दई सर दिन डुमेल बाजार के बतौर से हनीफ कॉस्मेटिक का सेंटर चिकम दाई अगर तरह बिल्कुल तो टोल प्रोडक्ट मिला जी और सबसे इफ्तिहार स्वीट एंड बेकर मेन रोड डुमेल बाजार चुकम दाई अल तक तो टोल प्रोडक्ट मिला जी दिन सहीजान जन स्टोर से रहा तो स्मार्ट टोल प्रोडक्ट मिला जी पॉ डुमेल बाजार के और सबसे इस्माइल कॉस्मेटिक से रहा टोल प्रोडक्ट तो मिला जी दिन बिल्कुल मौला अब्दुल हलीक से सर तो सब मंगल मिले के टूल प्रोडक्ट मिले जी इसमें कॉस्मेटिक इनाम एंड मुदसर शॉपिंग सेंटर उमर जई एंड लिंक रोड मंगल मिले के तो सद इसमें टूल प्रोडक्ट मिले जी कैसर मोबाइल जोन इलाज मार्केट मंगल मिले सर हाँ बिल्कुल मैसेज डेरा मन आगे सर हाँ टूल प्रोडक्ट मिले जी अल हिकमत स्वीट एंड बेकर मंगल मिले के तो सद इसमें टूल प्रोडक्ट मिले जी रहमानुल्लाह कॉस्मेटिक सेंटर मंगल मेला अल तक तो सर टोल प्रोडक्ट मिले जी द इश्मा कॉस्मेटिक वसीम जनरल स्टोर दिन लवा हाशिम कॉस्मेटिक सेंटर नूर आलम शॉपिंग सेंटर न्याजी सुपर स्टोर दिन लवा समी कॉस्मेटिक सेंटर मंगल मिले की नहीं सलारम मिले तो सर इश्मा टोल प्रोडक्ट मिले जी दिन लवा बिल्कुल टाउनशिप से तुम मिली जी रजा शाह शॉपिंग सेंटर आरिफ मार्केट मेन बनो टाउनशिप के द कॉस्मेटिक दिखो दिवाल के तुम टोल प्रोडक्ट मिली जी जमशेद एंड जुनेद कॉस्मेटिक सेंटर से रहा तो सर देश में टोल प्रोडक्ट मिली जी आमिर स्वीट एंड बेकर्स टाउनशिप चौक बनो के तुम टोल प्रोडक्ट मिली जी सर हाल स्वीट एंड बेकर्स मेन चौक टाउनशिप के अलते हैं तो सर देश में टोल प्रोडक्ट मिली जी हाजी बिल्कुल टाइम देर सर खत्म छो इंशाल्लाह इश्मा कॉस्मेटिक का प्रोग्राम चुकम दे दादे हर जुमे पर बिल्कुल तीन ना चार बजे पर तो इंशाल्लाह जब प्रेजेंट करो ठीक छो बदी प्रोग्राम के बिल्कुल तरसा तो सा तीन ना चार बजे पर और दिन लवा कला कला ची छे नौ बजे हम मौका मिले बिल्कुल नौ बजे हर सी वर्सरा द सहार दस ना ग्यारह बजे पर आगे टाइम के हाँ चिकल मौका मिला इंशाल्लाह प्रोग्राम की जरूरत तरसी नो बिल्कुल टाइम खत्म छे हर कॉस्मेटिक जनरल स्टोर के तो इसमें टोल प्रोडक्ट मिली जी कई चरता नहीं मिली नो कंपनी हेल्पलाइन नंबर पर 0342 311 2 बने कॉल कर लीजिए उस बदल नोड़े जजत मोता मुखल दो गानों की यासत है इंशाल्लाह बल प्रोग्राम की वजह से मुलाकात तरह पर दो लोला पमान

0: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4.
1: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क
2: आपका अपना रेडियो रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and very warm welcome to all the sweet listeners of Global FM 91 Dera Ismail Khan Radio Pegam 97.4 Pahadpur and Radio Aman 88.4 Dhaka. जनाब तीन रेडियो स्टेशन और एक आवाज, और ये आवाज है केसन नेचुरल पाकिस्तान की आवाज। जनाब वो आवाज की जिस आवाज का ताल्लुक है शिफा के साथ, जिस आवाज का ताल्लुक है आपकी खूबसूरती के साथ, और जिस आवाज का ताल्लुक है आपकी हेल्थ के साथ। तो जनाब एक दफा फिर से आपकी समातों की नजर सुपहर की चार बज चुके हैं और तीनों रेडियो स्टेशन ग्लोबल एफएम 91 डेरा इस्माइल खान रेडियो पैगाम पहाड़पुर और रेडियो अमन टांग से एक साथ बैक वक्त बरह रास्त आप लोगों के साथ मैं हूं मुखातिब और मुझे कहते हैं खलील थाबे शवान। जनाब जुमा का मुबारक दिन है, तो जनाब तमाम मुसलमानों को, तमाम मोमिनीन को जनाब जुमा का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत ही अजमत, बहुत ही बरकतों और बहुत ही फजीलत वाला दिन होता है, और इस दिन को बिल्कुल भी आम दिन जैसा कंसिडर नहीं करना चाहिए। हमेशा इस दिन को प्रोटोकॉल के साथ गुजारना चाहिए, और जैसे कि हमारे यहाँ रिवायात भी यही है कि जुमा के दिन जो है हर बंदा जो है गुस्ल करता है, हर बंदा जो है साफ सुथरे कपड़े पहनता है, यानी कि पाकीज़गी का ख्याल करता है, और जनाब जुमा की नमाज जो है वो एहतमाम के साथ अदा करता है। और जनाब यही आपकी रूह और आपके जिस्म को सुकून देने का ये सामान होता है कि जुमा के दिन बहुत सारे लोग जो है दुकानदार हजरात जैसे है, जैसे उनको जुमा की छुट्टी होती है, तो जुमा का दिन एक खुशी का इजहार होता है कि खुशी एक आपको फील होती है, जैसे आप सुबह उठते हैं और आंख खुलती है और आपका दिमाग काम करना शुरू करता है, और जैसे आपके दिमाग को सिग्नल मिलते हैं कि भाई आज तो छुट्टी है, तो आपके अंदर 2 किलो जो है खून बढ़ जाता है। बिल्कुल आपको जुमा के दिन बहुत बहुत मुबारक हो, और बहुत अच्छे तरीके से आप इसको यूजफुल बना सकते हैं। जनाब इस दिन सूरह काफ की तिलावत जो होती है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। सूरह काफ अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप यकीन कीजिए कि एक जुमे से लेकर दूसरे जुमे के दरमियान आप अल्लाह ताला की वैसे तो हिफाजत में होते हैं, लेकिन आपके लिए नूर बिछा दिया जाता है, जमीन से लेकर आसमान तक आपके लिए नूर बिछा दिया जाता है। और वो लोग जो जुमा के दिन कसरत से दुरूद पाक पढ़ते हैं उनका नाम भी एक खास लिस्ट के अंदर जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें जानने वाले, हमें सुनने वाले लोगों की आदत बन चुकी है, क्योंकि केसन के थ्रू हमने आप लोगों को ये बार बार रिमाइंडर देते हैं और याद दहानी कराते हैं कि जुमा के दिन ये दो काम जरूर किया करें। ठीक जनाब, एक तो आप नहाए होंगे केसन के शैम्पू के साथ, आपने ऑयलिंग की होगी केसन के हेयर ऑयल के साथ, आप अपने चेहरे को जो है ग्लो दिया होगा या चेहरे को चमकाया होगा केसन के लवली फेस वॉश के साथ, या फिर केसन के ग्लूटा फेस वॉश, या फिर जाफरानी साबुन, या फिर मिल्की सोप के साथ साथ, और उसके साथ साथ आपने अपने जिस्म को, अपने बदन को, अपने कपड़ों को, अपनी शख्सियत को निखारा होगा केसन के परफ्यूम्स के साथ। केसन के परफ्यूम अकबर एंड जहरा मौजूद है आप लोगों के पास, और आप लोगों की आसानी के लिए हमने छोटे परफ्यूम भी, पॉकेट साइज जो है पेन साइज परफ्यूम भी बनाए हैं। ठीक है जनाब, बहुत सारे लोगों की जेब भी इजाजत नहीं देती है, जैसे कि आजकल महंगाई का दौर है और जो है लोग 2000 का 3000 का परफ्यूम अफोर्ड नहीं कर पाते, या कर भी पाते हैं तो वो सिर्फ ईद ही लेते हैं जनाब। तो आप लोगों के लिए हमने ये मसला हल कर दिया है, और आप लोगों के लिए दो परफ्यूम भी हमने लॉन्च किए हुए हैं। ठीक है, इनका बड़ा पैक भी मौजूद है, कमर्शियल पैक भी इनका मौजूद है। ठीक है जनाब, और ये आपको 1500 से 1600 के दरमियान मिलेगा। ये वो परफ्यूम है जो बाजार में आपको 3,2700 के मिलते हैं। ठीक है जनाब, बहुत ही जबरदस्त कंसंट्रेशन के साथ वो परफ्यूम जो आपको बाजार से 2500-3000 के दरमियान में मिलता है ना केसन का, वो उसी लास्टिंग का परफ्यूम, उसी प्रोजेक्शन का परफ्यूम जो है आपको सिर्फ 1500-1600 रुपए में मिल जाता है। 50 ml की ये पैकिंग है। ठीक है जनाब, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप पहले इसको ट्राई कर लें कि इसकी स्टे कितना है, इसकी प्रोजेक्शन कितनी है, और इसकी खुशबू कितनी जो है मशहूर गुण है, तो डेफिनेटली आप लोग हमारा इसका टेस्टर परचेज कर सकते हैं जो कि 10 ml का होता है, जिसको हम पेन परफ्यूम बोलते हैं। केसन के पेन परफ्यूम दो मौजूद हैं, 250 रुपए का आपको मिलेगा। एक खवातीन के लिए है जिसको हम जनाब जहरा परफ्यूम कहते हैं, द फ्लोरल वाइब, और दूसरा मर्दों के लिए है जनाब जिसको हम कहते हैं अकबर परफ्यूम, सेंट दैट इंस्पायर्स। ऐसा परफ्यूम जो आपको आप तो लगाएंगे लेकिन दूसरे लोगों को
वो क्या करेगा जी जनाब, दूसरे लोग जब उसे स्मेल करेंगे, उन तक जब ये खुशबू पहुंचेगी तो वो आपसे जरूर पूछेंगे कि भाई कौन सी परफ्यूम आपने लगाई हुई है, कौन सी खुशबू लगाई है। स्पेशली मैं जहरा का तो 100% ग्रंटेड हूँ, क्योंकि खवातीन की ये हमारी प्रोडक्ट है, और खवातीन का आपको पता है कि जब भी मिलते हैं तो गले लगा के मिल रही होती है। खवातीन का ये अंदाज होता है मिलने के, मर्द तो हाथ मिलाते हैं, खवातीन जो है हाथ तो बाद में मिलाती है। मेरे ख्याल में तो खवातीन हाथ मिलाती नहीं है मिलते वक्त, है कभी देखा है आपने? हाँ जी ना, तो ऐसे मिलती हैं, गले मिलती हैं, तो उससे खुशबू तो हर बंदे तक पहुंच जाती है। एक तो होती है ना प्रोजेक्शन उसकी ज्यादा, जो हमारा जहरा परफ्यूम है, ठीक है जनाब, अकबर एंड जहरा।

क्योंकि मैं आपको मज अंदर की बात बताता हूँ, आपको जो परफ्यूम के अंदर बचत होती है ना वो बहुत कम है, ठीक है जनाब। जो परफ्यूम्स होते हैं ना इनके अंदर जो बचत होती है ना वो एज कंपेयर शैम्पू ऑयल क्रीम्स फेस वॉश उनकी निस्बत बहुत कम होती है। तो ये मेरा सिर्फ शौक था। शौक किस तरीके से, एक दफा मैं बहुत बड़े मॉल के ऊपर ठहरा हुआ था, तो वहां पर मैंने देखा कि जहां पर काउंटर होता है ना काउंटर, वहां पर हर जो डिपार्टमेंटल स्टोर वाला होता है या जो भी ग्रोसरी स्टोर वाला होता है उसने अपने पीछे परफ्यूम लगाए होते हैं, ठीक है ना। तो पहले पहले नजर आपकी जब पड़ती है ना तो वो परफ्यूम्स के ऊपर पड़ती है। तो मैं एक दो दफा ये चीज मैंने बड़ी नोट की, मैंने कहा यार ये कितनी ऑनरेबल जगह है कि इसको जो यानी कि जो कैशियर बैठा है या काउंटर के ऊपर जो बंदा बैठा हुआ है जिसके पास हम जाके बात बातचीत करते हैं या ऑर्डर की बात करते हैं, उसके पीछे जो हर बंदे को जो चीज नजर आती है वो परफ्यूम नजर आता है। तो मैंने कहा जी परफ्यूम तो मैं लॉन्च करूंगा। जब हमने कोटेशन वगैरह ली तो मुझे पता चला यार इनके तो, इनके अंदर तो बचत है नहीं बिल्कुल भी। तो मैंने कहा नहीं शौक है, शौक तो का तो फिर कोई मूल नहीं होता। मैंने कहा नहीं बनाएंगे परफ्यूम तो हम बनाएंगे। तो फिर ये मैंने अपने यकीन को सिर्फ इस वजह से कि कोई कस्टमर जब किसी बड़े मॉल में जाए किसी भी ग्रोसरी स्टोर के ऊपर तो पहली नजर जो है वो परफ्यूम के ऊपर पड़ती है और हमारा परफ्यूम वहां पर होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरा ये शौक पूरा किया और मैंने एट ए टाइम दो परफ्यूम लॉन्च किए, एक मर्दों के लिए और एक खवातीन के लिए। अच्छा जो लोग खुशबुओं को अच्छे तरीके से जानते हैं ना तो उनको पता होता है कि इस वक्त फीमेल के अंदर कौन सी खुशबू को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है और मर्दों के अंदर कौन सी खुशबू पसंद किया जाता है। खवातीन के अंदर ऐसी खुशबू जो फ्लोरल हो, जो फूलों सी खुशबू हो, वो खवातीन और लड़कियों की पसंदीदा होती है। और मर्दों के लिए वो खुशबू जो लकड़ी की खुशबू हो, ठीक है जनाब, जो लकड़ी की खुशबू हो, जो स्पाइसी मिसालों की खुशबू हो, जो ऐसे या फिर खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं उनके बर्गमूट टाइप इनकी जो नोट्स होते हैं वो मर्दों को वो ज्यादा सूट करते हैं, मर्दों का रोब बढ़ाते हैं। तो हमने इसी थीम के मुताबिक अपने ये दो परफ्यूम तैयार किए, अकबर एंड जहरा।

अच्छा जी, इम्प्रेशन जो है इनके अंदर जो जो हमारा जहरा परफ्यूम है, इसके अंदर जो इम्प्रेशन है वो गुची फ्लोरा का है। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जिस परफ्यूम को पसंद किया जाता है ख्वातीन में, लड़कियों में, वो गुची फ्लोरा है। ठीक है जनाब, और ये बहुत ही महंगा है, 1 लाख से ऊपर इसकी प्राइस है। तो सेम वही बनाना तो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसके इम्प्रेशन लिए जाते हैं। ठीक है जनाब, तो जो हमारे जहरा परफ्यूम है उसके अंदर बेसिकली अगर आप देखेंगे ना हमारा, अगर आपके पास हमारा परफ्यूम मौजूद है जहरा का, तो उसकी बैक साइड के ऊपर देखें तो लिखा हुआ है इम्प्रेस बाय गुची फ्लोरा। ठीक है जनाब, यानी कि जो 1 लाख से ऊपर का परफ्यूम है गुची फ्लोरा, हमने उससे इंस्पायर्ड होकर ये अपनी क्रिएशन की है और उसी के नोट्स को इसी के अंदर इंटाइटल किया है अपने जहरा परफ्यूम के अंदर। सो जो हमारा जहरा परफ्यूम है वो बेसिकली गुची फ्लोरा से हम इंस्पायर्ड है। ठीक है जनाब, जो कि बहुत महंगी प्रोडक्ट है। अच्छा, जो मर्दों का प्रोडक्ट है हमारी, उसमें भी हम डेफिनेटली एक बहुत बड़े ब्रांड से इम्प्रेस हैं जो कि 1 लाख से ऊपर उसकी प्राइस है परफ्यूम की, और वो है CK1। ठीक है जनाब, CK1 जो ओरिजिनल है वो आपको 80-70 हज़ार से कम नहीं मिलता, ओरिजिनल CK1। तो इसमें जो हमारे पास इम्प्रेशन है या जो हम इंस्पायर्ड हुए हैं मेल के इसमें, उसमें जो है CK1 है। लेकिन ये नहीं है कि आप अकबर खरीदेंगे तो आपको लगेगा कि आपने CK1 लगाया हुआ है, या आप जहरा खरीदेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने गुची फ्लोरा लगाया हुआ है। ये उनके इम्प्रेशंस हैं। ठीक है जनाब, उनके इम्प्रेशंस को हमने यूज किया है, लेकिन ये हमारी अपनी फॉर्मुलेशन है। इसके साथ 2 लाइट नोट्स में हमने जहरा के साथ 2 और फ्रेग्रेंसेस को फ्लोरल को ऐड किया है, और इसी तरीके से जो जो हमारा अकबर परफ्यूम है उसके अंदर भी इम्प्रेशन तो CK1 का है, लेकिन CK1 के साथ हमने कुछ और इम्प्रेशंस को भी ऐड किया है। सो आपको ये कभी नहीं लगेगा कि, या आप लगा के कहीं जाएंगे तो कोई ये नहीं कह सकता कि आपने CK1 यूज किया हुआ है, या कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आपने गुची फ्लोरा लगाया हुआ है, क्योंकि इसके नोट्स को हमने एकदम से उसको जो है डाइवर्ट किया है दूसरे नोट्स के साथ। तो बहुत ही प्यारी 2 खुशबुएं हैं, यकीन कीजिए आपके पास आएंगी तो

आप एक दफा तो लोग आपसे पूछेंगे, ठीक है जनाब, और इंशाल्लाह आप इसे छोड़ नहीं पाएंगे, बार बार खरीदेंगे हमारे ये खुशबुएं, जिस तरह हमारे और प्रोडक्ट आपको इंस्पायर्ड कर रहे हैं, जैसे हमारा मिल्की सोप, जैसे हमारा जाफरानी सोप, जैसे हमारा लवली फेस वॉश। ओ माय गॉड, लवली।

एडिसन के दो परफ्यूम है जनाब, अकबर एंड जहरा, और बहुत ही जबरदस्त किस्म की ये खुशबुएं हैं जनाब। और आपकी आसानी के लिए, इतनी आसानियां कोई किसी के लिए पैदा करता है जितनी हम आप लोगों के लिए करते हैं भाई। आप बड़ा ना खरीद सकें, आप छोटा खरीदिए, ठीक है जनाब। और 250 रुपए में आप दोनों घर लेके आ जाएं। क्या आज का गर्मी है तो हर बंदे की जरूरत होती है, आप कहीं सफर पर जा रहे हैं तो गाड़ी के अंदर एसी ना हो, ठीक है जनाब, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कर रहे हैं तो जनाब पसीने से बंदा जो है ना बेहोश होने लगता है, तो आपके पॉकेट में हो, आपके पर्स के अंदर मौजूद हो। और जिन लोगों को ये इश्यू होता है कि घर से तो आप परफ्यूम लगा के निकलते हैं लेकिन 2-3 घंटे की ड्राइव है, मेहमानों तक पहुंचते पहुंचते जो है खुशबू खत्म हो गई है, तो भाई मेहमानों के ऊपर अच्छा इंप्रेशन कैसे पड़ेगा, तो आपके पर्स में है। तो जैसे ही जनाब रिश्तेदारों के पार्टी के करीब पहुंचते जाए जनाब, एक दफा फिर से यूज कर लें। ये पॉकेट और पेन परफ्यूम का ये बेनिफिट होता है कि आपके जेब में भी आता है इजीली और आपके पर्स के अंदर भी रह सकता है, तो बड़े फायदे हैं इसके जनाब। और ये जो 250 रुपए का हमारा परफ्यूम है अकबर एंड जहरा

जी जनाब, ये जो 10 ml है जनाब, 10 ml, मेरे ख्याल में कि अगर आप कहीं वेडिंग पर किसी शादी के इवेंट में जा रहे हैं तो आपका बाहर का पूरा इवेंट ये कवर करेगा, यानी कि एक हफ्ता तो इजीली चल जाता है। यानी कि अगर एक परफ्यूम आप लेके जाते हैं कहीं पर, पेन परफ्यूम की मैं बात कर रहा हूँ, तो इजीली जनाब ये आपके लिए एक हफ्ता चल जाता है। तो बाजार में भी आपको बहुत सारे परफ्यूम मिलेंगे 200-200 रुपए वाले पेन परफ्यूम, लेकिन उनकी लास्टिंग इतनी होती है कि आप लगाएंगे और घर से बाहर निकल रहे होंगे खत्म हो जाएगी। लेकिन आप जब हमारे पेन परफ्यूम यूज करेंगे, ठीक है जनाब, तो आपको क्वालिटी का पता चलेगा, आपको लास्टिंग का पता चलेगा कि इसकी लास्टिंग कितनी देर है, इसकी प्रोजेक्शन कितनी जबरदस्त है। जो अकबर की प्रोजेक्शन है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि आप यहाँ से निकलेंगे तो आगे 10-20 कदम आगे वाले को पता चल जाएगा कि भाई कोई बंदा परफ्यूम लगा के आ रहा है। जो जहरा है ना, उसकी प्रोजेक्शन हमने कम रखी है, क्योंकि खवातीन के लिए मना होता है कि वो ऐसी खुशबू का इस्तेमाल करें कि जो दूर तक जाए। इसलिए मैं कह रहा था खवातीन तो गले मिलती हैं, जब भी एक दूसरे से मिलना होता है तो वो खुशबू खुद ब खुद एक दूसरे तक पहुंच जाती है। तो जनाब दो प्यारी खुशबुएं, जिस तरह हम आपको टॉप क्वालिटी फेस वॉश प्रोवाइड कर रहे हैं, लवली फेस वॉश जो कि खवातीन के लिए है, वो भी पिंक कलर का है। अच्छा, ये दोनों प्रोडक्ट हमारे पिंक कलर के हैं, ठीक है जनाब। ये जहरा परफ्यूम की जो थीम है, जहरा परफ्यूम की, वो भी पिंक है, बिल्कुल खवातीन का परफ्यूम है। और जो हमारा लवली फेस वॉश है वो भी खवातीन का है। सो जनाब वो भी पिंक कलर स्कीम के साथ मौजूद है। सो जनाब ये दोनों परफ्यूम आप लोगों के लिए मौजूद है, जहां पर आप अदर प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं आपकी हर जुमे की शान और हर जुमा नमाज के साथ, या फिर जुमा के बाद आप देखें असर के बाद शाम के वक्त लोग एक दूसरे से मिलने के लिए जाते हैं, बहन भाइयों से जो दूर रहते हैं, रिश्तेदारों से, तो एक अच्छी खुशबू जो होती है ना, वो आपकी शख्सियत का निखार होती है। आप यकीन कीजिए, आपने अगर 10,000 का सूट पहना हुआ है और अगर आप परफ्यूम लवर नहीं हैं, खुशबू पसंद नहीं करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी अधूरी है, ठीक है जनाब। जब आप एक अच्छी खुशबू लगा के कहीं एंटर होते हैं तो वो आपकी पहली शनाख्त होती है, बगैर बोले बगैर कुछ बताए कि जनाब इसकी कमाई कितनी है, ठीक है जनाब, ये कितना कमाता है, ये कितना पढ़ा लिखा है, उसको पूछने की जरूरत नहीं है। एक अच्छी खुशबू, एक अच्छा सेंट जो है, एक अच्छा परफ्यूम जो है, वो आपकी सबसे पहली शनाख्त होती है जब आप लगाकर किसी महफिल में जाते हैं, किसी से मिलने के लिए जाते हैं, लोगों की ऐसे खुशबू के साथ आप जाएं किसी महफिल में कि जनाब एक दफा तो लोगों की नजरें उठें आपकी तरफ, वो हवा का झोंका जो है वो उस खुशबू को लोगों के नाक तक इस तरह लेके जाए कि वो शख्स ढूंढने के ऊपर मजबूर हो जाए कि ये बंदा था कौन यार, ये आया कौन है महफिल में, ये गुजरा कौन है साथ से। आप कह रहे हैं ये शायद भाई कोई हमें फिल्म बना के दे रहे हैं, अल्लाह को जान देनी है। मैं उस दिन भी आपको ये बात बता रहा था कि मैं सुबह जब यहाँ घर से निकला और चुगल्ला के पास से गुजरने लगा तो मेरे पीछे एक बाइक वाला आ गया, लड़का था, उसने कहा भाई रुके रुके। मैंने कहा जी हुक्म भाई, ये कौन सा परफ्यूम आपने लगाया हुआ है? मैंने उस दिन जहरा परफ्यूम लगाया हुआ था, ठीक है। तो मैंने कहा ये जहरा है, कहाँ से मिलेगा? मैंने कहा ये केसन कंपनी का, किसी भी बड़ी दुकान पर चले जाए, यानी कि ये वो खुशबू है जो बंदे को मजबूर करेगी भाई पूछने के ऊपर, जरूर आपसे पूछेगा कि कौन सा है परफ्यूम ऐसी। वो मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि गुची फ्लोरा, तो हर बंदे को पता है कि गुची फ्लोरा क्या है, लेकिन इसको हमने जो दूसरी खुशबुओं के साथ मिक्स किया है तो वो इतनी कमाल का हमारा सीक्रेट फार्मूला बन गया है जहरा, कि बहुत मजा करेगा आपको इंशाल्लाह जब आप यूज करेंगे। बहुत शुक्रिया जी सभी लोगों का जो लोग हमारा इतनी बड़ी तादाद में ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, है जनाब, उन सबका बेहद शुक्रिया जो केसन का शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है जनाब, उन सबका शुक्रिया जो केसन का लवली फेस वॉश। हाँ जी केसन शिफा।

जी जनाब, रब की अता है केसन। बहुत शुक्रिया जनाब हमारे केसन ऑयल को खरीदने वालों को। सल्यूट जनाब, इतनी बड़ी तादाद में आप हमारा ऑयल और शैम्पू खरीद रहे हैं कि मार्केट का नंबर वन ऑयल और शैम्पू बन गया है केसन जोड़ी, यानी केसन शैम्पू। कॉल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं। कल के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जनाब। कल का आप लोगों का फीडबैक जो है वो शामिल नहीं कर सके थे हम, और आज आपके फीडबैक को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। टॉपिक कल वाला है, और मुझे अभी बाहर से इतला आई है कि आज फिर मौसम आशिकाना हो गया है, और ये ठंडी ठंडी हवा क्या आपके इलाके में भी चल पड़ी है जनाब? डेरा वालों, टांग वालों और पहाड़पुर वालों।

अच्छा जी, एक अच्छी न्यूज आप लोगों के साथ शेयर करनी। वैसे ये तो हाजमे की हम बात कर रहे थे, खाना खाने के बाद अक्सर वो जो आपको महसूस हो, खाना खाने के बाद अक्सर जो है लोग चहलकदमी कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा मजेदार खाना हो ना तो फिर बंदा जो है वो समझ नहीं आती उसको कि उसने कितना खा लिया है, लेकिन जब खा लेते हैं तो फिर पता चलता है कि क्या ही खा लिया है मैंने। हाँ जी, वो कहते लकड़ी लड़की बकरा खाते हुए कैसी लगेगी, तो कैसी लगेगी, इस तरह होता है कि बंदा फिर बंदे को कुछ पता नहीं चलता कि उसने क्या खा लिया। लेकिन खाना खाने के बाद अचानक से बंदा कहता है कि यार अब तो थोड़ा सा खुद को हल्का कर लूं, फिर वो वाक चाक करना शुरू कर देता है। तो अगर आपके घर के अंदर हाजमा कंट्रोल सिरप पड़ा है, ये इतनी प्यारी चीज हमने बनाई है, आप यकीन कीजिए इसको हमने अभी जो नया बैच आया है ये पहले से ज्यादा बेहतर रिजल्ट के साथ आया है, पहले से ज्यादा ये गाढ़ा है, बिल्कुल वाइट होगा पैक्यू में, ठीक है जनाब, और बहुत ही मजेदार किस्म का इसका टेस्ट तो प्लेजेंट है ही है। लेकिन फौरी तौर पर दो ढक्कन या दो चम्मच जो रिस्पांस आपको देते हैं ना, वो देखने वाला होता है कि विद इन नो टाइम, विद इन टू थ्री मिनट्स जो है आपको रिलीफ मिल जाएगा। जितना ज्यादा आपने खाया होगा फौरी तौर पर हाजमे की तरफ आपका हाजमा ये तेज कर देगा, ठीक है जनाब, और साथ साथ में जो है तेजाबियत जो आपको सीने के अंदर जलन हो रही है उसको फौरी तौर पर ये खत्म कर देगा, ठीक है जनाब, और गैस जो हो गई है उसको खत्म कर देगा। और ऐसे लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, ठीक है जनाब, कब्ज के मामलात में घिरे रहते हैं भाई, इसका लोग बहुत इलाज करवाते हैं नहीं ठीक हो पाते, आप हमारा हाजमा कंट्रोल सिरप पीजिए, आपका हाजमा सेट होगा, सब कुछ सेट होगा, ठीक है जनाब, सारा मसला हाजमे का है। उस दिन मैं आपको बता रहा था कि ऐसे लोग कि जिनको जिनके मुंह का जायका कड़वा रहता है या जिनके मुंह से स्मेल आती है, ठीक है जनाब, अपने उस क्या जो बदबू किस्म की होती है उसको खत्म कर सकते हैं आप हमारे हाजमा कंट्रोल सिरप से। अब मैकेनिज्म अपना काम करेगा, आपके जो मसला है जिसकी वजह से स्मेल आती है मुंह से, बिल्कुल आप एक ही बोतल के अंदर आपका जो है ना ये मसला हल करेगा केसन का हाजमा कंट्रोल सिरप, ठीक है जनाब, 150 रुपए है। यकीन कीजिए ये वो वाला सिरप है जो इस वक्त आपको बड़ी बड़ी कंपनियां 300-300 रुपए का दे रही हैं, ठीक है जनाब, और क्योंकि हम ये डायरेक्ट आपको दे रहे हैं, इसमें किसी डॉक्टर के कोई कमीशन नहीं है, किसी मेडिकल स्टोर वाले का कोई इसके अंदर डिस्काउंट नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट यूं समझ ली कंपनी से आप तक ये चीज आ रही है। जो मेडिकल की चीजें होती है ना, मेडिसिन की, मैं आपको बहुत बता चुका हूं, मेडिसिन को जो चीजें होती है ना वो डायरेक्ट आप तक नहीं पहुंचती हैं, उसके अंदर बहुत सारे लोगों का हिस्सा होता है, मेडिकल स्टोर से लेकर मेडिकल रैप तक, मेडिकल रैप से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर तक, डिस्ट्रीब्यूटर मुझे तो सारी चेन का पता है कि जैसे किसी कोई कंपनी, मेडिकल की कोई कंपनी कोई चीज भेजती है तो अगर एक गोली की कीमत 22 रुपए है ना, 22 रुपए, ये मैं आप दावे के साथ आपको कह रहा हूं, कोई भी मुझे चैलेंज कर सकता है, एक गोली जो 22 रुपए की आप लेते हैं उसकी फैक्ट्री से निकलते वक्त कीमत 4-5 रुपए होती है। जब वो फैक्ट्री से एक गोली जो आप 22 रुपए की एक खरीदते हैं ना, वो निकलते वक्त जब फैक्ट्री से निकलती है तो उसका खर्चा होता है 3-4 रुपए। उसके बाद फिर उसमें चीजें ऐड करते हैं, इसमें डॉक्टर के कमीशन ऐड, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर का खर्चा ऐड, इसके अंदर जो है मेडिकल स्टोर वाले का 15% ऐड करो, इसमें मेडिकल रैप की तनख्वाह, इसमें मैनेजर की तनख्वाह, इसमें मैनेजर की गाड़ी का खर्चा, इसमें, यानी कि करते करते वो सारा कुछ डालते जालते वो 3 रुपए वाली गोली जो होती है आप तक जब पहुंचती है तो वो 22 रुपए की हो चुकी होती है, लेकिन पीछे उसका खर्चा यही होता है, ठीक है जनाब। तो हम आपको क्यों ये चीजें इतनी, जो हेल्थ की चीजें इतनी सस्ती दे रहे हैं कि डायरेक्ट आप तक हम ये चीजें पहुंचा रहे हैं। ये देखिए हमारा ये सिरप जो है बहुत कम मेडिकल स्टोर्स के ऊपर अवेलेबल होगा, तमाम कॉस्मेटिक स्टोर के ऊपर मौजूद है। तो ये आपकी बचत के लिए हमने ये प्रोडक्ट बनाई है, और यकीन कीजिए अगर आप इस वक्त मैदे का कोई सिरप जिसकी कीमत 400 रुपए ना, अगर आप वो भी पी रहे हैं तो वो जब खत्म हो तो आपने केसन का हाजमा कंट्रोल सिरप लेना है, ठीक है ना, केसन का हाजमा कंट्रोल सिरप लेना है, और फिर हमें FM के ऊपर आके बताना है कि भाई आप इतनी तारीफें करते थे कि आपकी कंपनी

0: बिल्कुल ऑन एयर आके यहाँ पर बोले, ठीक है जनाब, हम सुनने के लिए तैयार बैठे हैं, ये नंबर आप लोगों के लिए होता है, आप लोग आकर यहाँ पर जो है हमारे साथ आ सकते हैं। हम खुद यकीन कीजिए कि किसी भी मेडिकल स्टोर वाले को या डॉक्टरों को हम ये चीज नहीं दे रहे, लेकिन जो खुद हम तक अप्रोच करते हैं कि भाई हमें ये चीज चाहिए तो हम उनको देते हैं, जैसे हैदर मेडिकल स्टोर है, नियाजी मेडिकल, क्योंकि आप लोग वहां से खरीदते हैं। अभी जैसे कि कल हमसे एक बनू बनू अड्डे के ऊपर एक मेडिकल स्टोर है, इबाद, बनू अड्डे पर है जनाब इबाद मेडिकल स्टोर, वहां पर आप जाएंगे मेरे ख्याल में कि डाइवो के अड्डे के बिल्कुल आसपास ही है, ठीक है जनाब। तो वहां पर अब आपको किशन के सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, उन्होंने खुद हमसे रब्ता करके हमसे सारे प्रोडक्ट मंगाए हैं, तो बनू अड्डे पर आपको ये प्रोडक्ट मिल सकते हैं। हमारे साथ शबरा उस्ताद के से मौजूद है जनाब, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम खलील भाई साहब, क्या हाल है सर?
0: अच्छे वे सही, तुसे सुनो ठीक ठाक वे?
1: अल्लाह की मेहरबानी है, जुमा मुबारक, एकता बहुत अच्छा दी है, बरकत दी है,
0: बरकत तुम्हारे पास है। किवे मौसम है से केच दे विच?
1: बस जीने तो पहले जिक्र करें दे पहले ना ताला, अल्हम्दुलिल्लाह कैसा लग जो प्रोग्राम थी जाता, मौसम भी आ रहा है और खुशगवार भी चल रहा है, अच्छा
0: खुशगवार मौसम दी इब्तिदा चार बजे सारे प्रोग्राम को स्टार्ट थी वेंदी है।
1: बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि खुशामद नहीं, क्योंकि शिकायत नहीं थी और थोड़ा रिलीज होना अल्हम्दुलिल्लाह
0: जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। सारे सारे अखियां दे तारे, सारे सारे जिगर गोशे, इन सारे सारे दोस्त इन मोहब्बत इन केसन, अल्लाह ताला दे फजल करम दे बाद सारी थोड़ी बहुत मेहनत उन दे बाद तुसा लोगों दी सपोर्ट है सही, ठीक है सही, चाहे वो एक्टिव लिसनर हैं चाहे वो साइलेंट लिसनर हैं, उन्होंने मोहब्बत है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक कंपनी का एक नाम है, एक मकाम है, हर जहां मौजूद है, ते टॉप लीडिंग कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह।
1: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल, बाकी साहब कोई कहते आखे ते या मोहब्बत दे या नहीं होता, अगर प्रोडक्ट अच्छा हो तो कहती वजह को सारी मोहब्बत है नल कह में, अगर प्रोडक्ट अच्छा ना हो तो तू सजे कुछ करो है तो आखिर ही दिया छोड़ लो मुझे यार, तेरे तेरे जब खून लगे तू तो माशाल्लाह प्रोडक्ट की वजह को थारी जो रहना बा कमाल और बा कमाल दोस्ती तो हमें सारी आनी चाहिए।
0: बहुत मेहरबानी सही, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।
1: बाकी साहब जो है ना हाजमा कंट्रोल का एक बंदा आता है जो हाजमा कंट्रोल जो है ना साहब थोड़ी साइज थोड़ी लगी थी तो कुछ जो है ना प्राइस
0: सारा अप्रूवल 240 ml का भी सारे को मौजूद है, ठीक है सर, सारे को रजिस्ट्रेशन जरी मौजूद है ना, 60 ml 120 ml 240 ml सारे को अप्रूवल है, ठीक है सही, हम सारी मर्जी है, असा 60 ml भी लोगों को दे सकते हैं, 120 ते 240 भी दे सकते हैं बढ़ा के, ठीक है, लेकिन असा इको ए स्टैंडर्ड साइज है ना, 120 ml हर बोतल तकरीबन 120 ml दी होंदी है, ठीक है, तो इंशाल्लाह फ्यूचर दे विच बिल्कुल ए, क्योंकि जेरे मैदे दे मरीज होंदे ने उनको लंबे अरसे तक बाजूकात गिंदे पे होंदे ना, तो इंशाल्लाह जेरे ओ सारे को अप्रूवल मौजूद है, ठीक है सर, असा 240 ml तक सारे को बिल्कुल गवर्नमेंट को सारे को रजिस्ट्रेशन है, और त्रै रेंज असा इन्हें लॉन्च कर सकते हैं, 60 ml 120 ml तो 240, 120 ml ऑलरेडी मौजूद है, तो इंशाल्लाह 240 भी तुम्हारी मोहब्बत में साना रही तो 240 भी आवे इंशाल्लाह।
1: माशाल्लाह जो है ना वक्त की जरूरत और अहम जो है ना सारिया जी मुश्किल पेश आनी पे, चाहे जवान है चाहे मिडिल क्लास है चाहे जो है ना एजेड बंदा है, इस तरह लाजमी और इस तरह जरूर जो है ना शाट नकी करो क्योंकि जरूरत है।
0: जी जना मुलाजिम हुसैन सगू शुमाली से मैं उस दिन उनको याद कर रहा था कि कहाँ है आजकल नहीं आ रहे ना हमारे साथ शो में नहीं होते शायद उनको प्रोग्राम के इसका उसका नहीं पता टाइम का नहीं पता है नहीं हो कोई भी इशू हो सकता है अल्लाह ताला उनको होश रखे वो भी किशन के लवर हैं और मुझे पता है वो प्रोग्राम सुन रहे होंगे या नहीं सुन रहे होंगे वो किशन को छोड़ने वाले हरगिज नहीं है किशन को बेहद पसंद करते हैं और वो मेरे ख्याल में कि रेडियो पैगाम के ऊपर जो प्रोग्राम चलते हैं वो सिर्फ किशन के प्रोग्राम में ही कॉल कर रहे होते हैं और इस तरीके से पहले तो वो मुझे प्राइवेटली कॉल करते थे कोई चीज़ उनको नहीं मिल रही होती थी तो वो ज़रूर मुझसे रब्ता करते थे कि ये चीज़ नहीं मिल रही ये चीज़ नहीं मिल रही है मैसेजेस आपके बहुत सारे हैं जनाब उनको जल्दी से हम इंक्लूड करते हैं 9 मिनट का दौरानी हमारे पास आमिर अवान पाकिस्तानी है सलाम खलील भाई मेरी तरफ से आपको और सबको जुम्मे मुबारक हो आपका शो और केसन सोने पे सुहागा है दुआ करें अकबर को जहरा जल्दी मिल जाए लड़के तुम भी कसम से ना सारे बोलो आमीन सलाम टू ऑल आमिर अवान पाकिस्तानी है और शदीद किस्म के कुंवारे जो होते हैं उनमें आमिर अवान पाकिस्तानी है और पहाड़पुर में हमारे दोस्त होते हैं क्या नाम है उनका मलिक हाँ जी असमत पहलवान तो ये क्या इनको भी जहरा मिल जाए अल्लाह ताला जरूर इनकी किस्मत भी जो लिखी होगी वो जरूर मिलेगी अच्छा जी एक मैसेज है कि हाथ और पाँव के लिए क्या है केसन के पास हाथ और पाँव के लिए जो चीज़ है ना वो ब्यूटी पार्लर वाले भी हमसे लेके जाती है हमारा स्टिकर उतार कर ना वो लोगों को बेचती हैं कि हमने बनाई है ये हाथ पाँव वाली क्रीम ठीक है जनाब केसन की जो हैंड एंड फुट वाइटिंग क्रीम है वो ब्यूटी पार्लर वाली लेके हमसे जाती हैं और हमारा स्टिकर उतार कर या इसमें से क्रीम निकाल कर अपनी क्रीम में डालकर साथ में क्लोबी वीट ऐड करके वो 600 का 700 का फार्मूला बेच रही होती हैं वो जो हमसे 300 की लेती हैं तो हैंड एंड फुट वाइटिंग क्रीम है लेप वाला फार्मूला जनाब इसको आप लगा सकते हैं एक और कॉल एसएमएस है अस्सलाम वालेकुम अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम सर माई सेल्फ के यू हिना गुलनूर कैसे हैं आप और सभी लिसनर्स जी ठीक है केसन के दोनों परफ्यूम्स ही मेरी जान है और डेली ही परफ्यूम यूज करती हूँ चाहे घर पर हूँ या कहीं जाना हो बस अकबर और जारा को मैंने इस तरह कैटेगराइज किया हुआ है कि है कि प्रोजेक्शन के बिना पर घर में मैं अकबर परफ्यूम अच्छा जी आगे इन्होंने बहुत बड़ा मैसेज है वो हमारी एक लिसनर होती थी फरवा महसूद ग्लोबल एफएम 91 के ऊपर शादी हो गई उनकी तो अपने घर वाली हो गई वो उनके मैसेज इस तरह लंबे होते थे फिर 2 दिन के बाद हमें पूरा मैसेज मिलता था और मैं उनका जब मैसेज आता था मैं कहता था अखबार वाला मैसेज आ गया तो उस दिन भी हिना गुल ने इतना ही लंबा मैसेज लिखा था जिसकी वजह से दूसरे दिन मैंने आपका लवली फेस वॉश का ये थी इस वक्त सुन रही होंगी मेरा प्रोग्राम ना तो इनकी जुबानी इनके कान भी सुन रहे हैं तो ये कह रही थी कि मैंने यानी कि जैसे बंदा थोड़ा सा मेच्योर होता है तो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स की तरफ आता है तो ये कहते हैं कि मैंने जो सबसे पहला फेस वॉश इस्तेमाल किया था वो लवली फेस वॉश था और उस दिन से लेकर आज तक मैं लवली लगा रही हूँ और आज तक मुझे कोई साइड इफेक्ट इस फेस वॉश का मिला ही नहीं है अच्छे रिजल्ट मिले हैं और इन्होंने कहा था कि मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ केसन के प्योर वाइटनिंग लवली फेस वॉश से जिसे हम कहते हैं कि पिंक ग्लो वाला हमारा फार्मूला है जो कि अनारी एक्सट्रैक्ट है ठीक है ना पोमीग्रेनेट एक्सट्रैक्ट तो ये जो फैमिली है ना हिना गुल की और माशाल्लाह ये ए टू जी केसन को यूज करने वाली है यानी कि हैंड एंड फुट क्रीम से लेकर ब्यूटी स्प्रे से इस दफा ये आई तो मेरे ख्याल में ब्यूटी स्प्रे शॉर्ट था तो नहीं ले सकी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये केसन के हर एक प्रोडक्ट के ऊपर इस तरीके से सोल्ड है कि मैं जिस प्रोग्राम के ऊपर भी बात करूंगा ना इनका रिव्यू जरूर आएगा और ये किसी भी कंपनी की क्या कह सकते हैं एसेड होते हैं ये लोग जो कि एनी शाहिद होते हैं जो बताते हैं कि वाकई भी आप जो बात कर रहे हैं ना जैसे मैंने आज अकबर और जारा की बात की है तो इन्होंने कहा कि ये दोनों मेरे पास हैं और दोनों को मैं इस्तेमाल करती रहती हूँ इनका मैसेज पूरा नहीं आया है अब ब्रेक हो गया है और कल अगर पहुंच गया तो फिर नहीं मिलेगा अच्छा जी अगले हफ्ते में जो है मेरा कोई फैमिली के साथ शेड्यूल है जनाब कोई नॉर्दर्न एरियाज के ठंड वंड मैंने कहा हम भी देख के आ जाए थोड़े से फैमिली के लिए बच्चों को क्योंकि हर वक्त बिजनेस में होते हैं तो हक बनता है फैमिली को टाइम देना तो अगले हफ्ते जो है अगले हफ्ते से मेरे ख्याल में इतवार वाले दिन से जो है प्रोग्राम हमारा तीनों स्टेशन के ऊपर लाइव नहीं हो सकेगा, ठीक है जना, 10-12 दिन के लिए, या कोशिश करेंगे कम से कम, लेकिन 8-10 दिन जो है मस्त हैं कि आप लाइव शो हमारा तीनों स्टेशन से नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि फैमिली के साथ मैं थोड़ा टूर पर बाहर जा रहा हूँ, तो उसके बाद जैसे वापस आएंगे, लेकिन इस दौरान भाई प्रोडक्ट नहीं छोड़ने आप लोगों ने, ठीक है जनाब, प्रोडक्ट वैसे ही खरीदने, ये नहीं कहना कि खलील भाई तो है नहीं तो हम भी छुट्टियां कर ले, मैं छुट्टियों पर जा रहा हूँ, आप लोगों ने छुट्टियां नहीं करनी है, ठीक है जनाब। तो असल में बताने का मकसद ये कि जब 2-3 दिन लोग रिकॉर्डिंग सुनते हैं ना, फिर वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई के साथ क्या हो गया, क्योंकि रिश्ता आप लोगों के साथ एक ऐसा, फिर वो हर बंदा कॉल कर रहा होता है, फिर किसी को बंदा रिप्लाई कर पाता है, किसी को नहीं कर पाता, तो फिर वो सबके लिए परेशानी होती है। तो अभी चूंकि मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, तो आपको समझ भी आ गई कि भाई अगला एक हफ्ता जो है यानी कि इतवार से जो है ऑनवर्ड हमारा लाइव शो नहीं होगा, शायद इतवार वाले दिन हमारा आखिरी लाइव शो होगा, उसके बाद फिर आपने रिकॉर्डिंग सुननी है, रिकॉर्डिंग में भी आप लोगों की बातें होती हैं, शबरा उस्ताद अपनी कॉल को सुनेंगे, हैं जी नजर हसन अपनी कॉल को सुनेंगे, मास्टर रफी साहब जो है वो अपनी कॉल को सुनेंगे, आप लोगों ने अपनी कॉलें सुननी है रिकॉर्डिंग के अंदर, ठीक है जनाब, और उस कि आपकी अपनी आवाज कितनी प्यारी है जनाब। अच्छा जी, कौन है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, कौन है, कौन है जनाब, कौन कौन कौन, जी जनाब अस्सलाम वालेकुम, मैं सोने अमान, मुझे लोगों की बिल्कुल भी पहचान नहीं है, और सब सुनने वालों को सलाम कह रही है, चलो जी ठीक है, ये सबकी ये बात होती है, पहचान बड़ी मुश्किल होती है। सलाम डियर आरजे, आज पीपुर हलीमा बेकरी पर केसन शैम्पू खत्म था, मैं कल फ्रेंड्स एंड फैमिली सेंटर से जाकर केसन शैम्पू लूंगा, डियर आप और आपकी कंपनी सलामत रहें, शैम्पू हमारा अल्लाह ताला इसे नजरबद से बचाए, यकीन कीजिए कि हमारी प्रोडक्शन से इसकी सेल, आज आपके पहाड़पुर से हमें जो ऑर्डर आए थे हम उसका हम तीसरा हिस्सा भी नहीं बेच सके उनको, और मैं परेशान भी हूँ कि मैंने टूर पे जाना है और पीछे मैनेजमेंट का क्या हाल होगा देखते हैं, क्योंकि शैम्पू हमारा इस वक्त शॉर्ट है, और शैम्पू हसीब जन स्टोर के ऊपर भी ख़त्म था, लेकिन कल कोशिश करेंगे कि उनको अरेंज करके भिजवाते हैं, इसके अलावा फ्रेंड्स एंड फैमिली पर भी ख़त्म है तकरीबन, और इन सबके कार्टनों के ऑर्डर आए हुए हैं, इन सब ने पिछले 3 दिन से हमें ऑर्डर दिए हुए हैं, भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि जनाब कल के दिन में ये शॉर्टेज वहाँ पर शैम्पू की ख़त्म हो जाए। तो ये जो भी हैं हलीमा मार्ट है, हलीमा बेकरी है, वहाँ पर हमारे प्रोडक्ट मौजूद होते हैं, आप वहाँ से खरीद सकते हैं, ठीक है जनाब। आमिर हुसैन, अमीर हुसैन जो है, सलाम जी हमारे साथ हैं, वालेकुम सलाम, कह रहे हैं कि जनाब दिल जरदे जोर ते नहीं मिलदा, मिठे बोल अला दिल मिल वैसी, इंदी कीमत मास तबस्सम तू खुल के आ दिल मिल वैसी, या अकियां दे मैं खाने दा हिक जाम पिला मिल वैसी, ए अमीर दिलां दा सुदागर रख दिल विच झा, दिल विच धा झा मिल वैसी। बहुत शुक्रिया जनाब, सराकी में होता है तो बाजू का लफ्ज ऊपर नीचे हो जाते हैं, और बोतल पीती हुई है जय केसन जोड़ी, हेयर केयर जोड़ी इस्तेमाल नहीं कीती, उन्हें वड़ी गलती कीती हुई है। अच्छा जी, ये उन्होंने हीरा है हमारे साथ पहाड़पुर से, और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आई एम हीरा फ्रॉम पहाड़पुर, सर जी शो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, एंड केसन की परफ्यूम की बहुत ही प्यारी और लाजवाब खुशबू है, लास्ट में सब सुनने वालों को सलाम जी। ये हीरा भी हमारा प्रोग्राम यूज कर चुके हैं। तीसरा परफ्यूम जो है रुखे जानान, उसका नाम है रुखे जानान, जेंडर लेस है जनाब, ठीक है जनाब, वो हमने जेंडर लेस बनाया है, यानी कि यूनिसेक्स है, उसमें आप मेल फीमेल उसे दोनों जो है यूज कर पाएंगे। रुखे जनान इंशाल्लाह भरपूर कोशिश होगी कि इसी महीने के अंदर आपको हमारी तीसरी फ्रेग्रेंस, तीसरी खुशबू जो हम लॉन्च कर रहे हैं, उसका बड़ा पैक अभी लॉन्च नहीं कर रहे हैं हम, रुखे जानान केसन का जो तीसरा परफ्यूम है, जो पेन परफ्यूम होगा, ठीक है जनाब, उसकी बड़ा परफ्यूम अभी हम लॉन्च नहीं कर रहे, उसका यही टेस्टर हम लॉन्च कर रहे हैं पेन परफ्यूम, एंड देन उसके बाद मुझे पता है कि आपको वो कितना अच्छा लगना है, मुझे पता है, क्योंकि वो जो क्लासिकल हमने खुशबू एक और बनाई है, अकबर जारा अपनी जगह, लेकिन ये जो हमने स्टेप लिया है रुखे जनान के नाम से परफ्यूम बनाने का, ये भी आपको बहुत पसंद आएगा, ठीक है जनाब, बहुत ही पसंद आएगा, और जिस तरह आप अकबर और जारा को प्रायोरिटी पर रखते हैं, इसी तरीके से आप जो हमारे थर्ड खुशबू आ रही है उसको भी बेहद पसंद करेंगे। टाइम हमारे पास ख़त्म हो गया जनाब, 5 बज चुके हैं, और आपसे मुलाकात इंशाल्लाह जी जिंदगी रही तो कल होगी, ये तो हमारा टाइम आखिरी टाइम और आखिर में एमबी साहब जो है हमारे साथ, चलो जी इनकी एक मिनट की कॉल लेते हैं, कॉल काटिएगा मत जनाब। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम सर जी, बस मैं कहने तो हाजिर लगा मत सर
0: जी। हाजिर लगी सर तुम्हारी,
2: माशाल्लाह प्रोग्राम अच्छा रहना चाहिए, बिल्कुल जी मौसम खुशगवार है ना, थोड़ा एक घंटे खुशगवार है सर।
0: अच्छा जी, मजीद खुशगवार थी मैंने मौसम अच्छा आते बाद प्रोग्राम सुनने को मिल गया था, बाद मजा दोबारा थी सोने थे।
2: क्या बात है, मजा आ गया, डबल मजा आ गया सर, बिल्कुल जी।
0: ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी सर, शुक्रिया साहब पाड़पुर से हमारे साथ मौजूद थे। तो ना ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कल आपसे मुलाकात होगी पाड़पुर वालों के साथ, तो सुबह 9 बजे हमारी मुलाकात होती है मॉर्निंग शो में, लेकिन डेरा और टांग के लोगों के साथ कल मुलाकात होगी 4 बजे। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।
3: It's 5 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4.
4: चाहतों के रंग अमन के संग, अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
3: जमजम हेयर शैम्पू एंड जमजम हेयर ऑयल, जमजम हेयर ऑयल द विख्तानो कुलाकड़ी यो पदवा और विख्तानो लावर कवी यो कुदरती चमक चमक। आया स्तासुप विख्तानों की खुशकिदा, विख्तान मो गुरजेगी, विख्तान मो वदन कवि या मो विख्तान मातीगी। जमजम हेयर शैम्पू एंड जमजम हेयर ऑयल हम स्तासु दफारदी कुमचे स्तासुद विख्तो खुशकी खारख प मुकमल तो गखत्म भी नो बिल्कुल जी हम उस जाला इंतखाब की जमजम हेयर शैम्पू एंड जमजम हेयर ऑयल चिहाइस्त मो यो फुद्वशी नो द मिलाविदो पतयाद साथी फ्रंटियर फर्नीचर चारफाई नाइलोन मार्ट मदे मुकाबिल गली गुलाबी फम टांग सिटी राप्ता नंबर 0343-912-1745।

0: दुआ में याद रखे सो
1: बटन सुनहरी चोले ते बटन सुन
0: जिंदगी रही ता सा अंधेरे वंदेरे
1: प्यार दी अड़या
0: लाग लजमे को पांच कोल ते छी वेती मुलाकात थी अपने दोस्त नाल अशरफ जोशी दोस्त इजाजत ता अल्लाह हाफिज़।

0: Your music, your request.
1: This is Radio Station.
2: Radio Aman.
3: बीमारी हक दे अवेलाजी सुनत अमल ले अवेलाजी सुनत अमल ले
4: ओस कचेरे तासु तदासे अमराज भी चितासु वरना डेर परेशान आयो और डेर गर्जिदली कड़ीदली डेर गर्जिदली कड़ीदली यो
3: नो बिल्कुल मायूसके गई मां मायूसके गई मां अल शिफा दवा खाना शवाल मार्केट टांग सिटी ता तशरीफ रावड़े औ द हकीम मौलाना नूरुल हुदा सेवना पल इलाज तरला सकवले शे
4: औ द नूरु मालूमातो दे पारा पदग नंबर काल कवले शे
3: 0319 55 23 404
5: Welcome to Radio Aman 88.4.
3: अल शिफा दवाखाना अल शिफा दवाखाना शवाल मार्केट टांग पुकुम के ची मौजूद द्वी मौलाना हकीम नूरुल हुदा साहेब सहर अतो बजू नवाखला तरमाजीगर सलोरु बजू भोरे द मरीजानो चेकअप कवी